0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: अनुरोधक दीपजनवन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म पति प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्वत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन् 2026 मे 29 तारिक ज्येष्ठ 15 गते शुक्रबार त्रयोदशी तिथि

मिकपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर द नारी ले प्रगति पथ को ये

नगरेर पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेर पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा।